0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: The way you move is good, beautiful. You don't wanna stop. The way you move is.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है Cool Song.

You're listening to Radio Ala 106.3 FM. Tanisha hai aapke saath. Bindaas morning chal rahe hain aap bhi rahe. I asked for the pictures ki bahar aasman ka kya haal hai. So it seems the same jaisa mujhe subah dikh raha tha. But yeah, thoda sa sunny to ho gaya hai. So please take care of yourself. Stay hydrated meri jaan. Aur bhar bhar ke sunscreen laga lo. Thik hai. Aur Qatar mein kya ho raha hai iski baat karte hain. So 11th Souk Waqif Local Dates Festival jo hai. Wo kal se shuru ho chuka hai. Ji haan, ye 10th of August tak chalne wala hai. ईस्टर्न स्क्वायर पे हो रहा है ये सूक वाकिफ में, जहाँ पे 125 लोकल फार्म्स जो है वो शोकेस कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ फ्रेश प्रीमियम क्वालिटी कतरी डेट्स. यस, यू कैन बाय फ्रेश डेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द लोकल फार्मर्स. आप वहाँ जाके कतर का जो एग्रीकल्चरल हेरिटेज है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. और एक बहुत ही फैमिली फ्रेंडली एटमोसफियर है. सो जाइए अपने किड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. गेट ऑल दोज यू नो अमेजिंग डेट्स. हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. एंड ये जो फेस्टिवल है, ये पहला एडिशन है उसका 2016 में हुआ था. तब सिर्फ 19 फार्म्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. 19 एंड नाउ इट इज 125 एंड दैट्स अ बिग डील. सो इट इज गोइंग ऑन रियली वेल. चेकआउट कीजिए. इसकी जो ओपनिंग आवर्स है संडे से लेकर थर्सडे तक शाम 4 से 9 और फ्राइडे और सैटरडे को होता है 4 से 10 बजे तक. सो जरूर जाइएगा और फिलहाल जरूर सुनिए ये कमाल गाना. स्टे ट्यून्ड.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

लूडो मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में हरदम हमदम. व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं. यहाँ पर और वक्त हो चुका है वैकी विजडम में. आज हम एक ऐसी रिलेटेबल चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आई थिंक हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस करी है. एंड दिस थिंग इज कॉल्ड सोलोमन्स पैराडॉक्स. सो बेसिकली आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपके पास आ रहा है एंड आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस, इट कैन बी अ करियर एडवाइस और अ रिलेशनशिप एडवाइस और यू नो एनी सिचुएशन इन लाइफ, एंड यू आर एबल टू गिव सच एक्सलेंट एडवाइस टू दैट पर्सन कि भाई तू ये कर ले यार, लाइफ सेट हो जाएगी यार, दैट पर्सन इज नॉट नाइस फॉर यू, दैट पर्सन इज परफेक्ट फॉर यू, यू नो लाइक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप बहुत बढ़िया एडवाइस दे देते हो किसी और को. लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ वो एडवाइस खुद पे कभी लागू कर ही नहीं पाते. यू नो दैट्स वेयर आई ऑलवेज डू लाइक इफ फॉर दैट मैटर सुदेव बहुत ज्ञान देता है राइट. सो अगर वो मुझे कोई एडवाइस दे रहा है तो आई एम लाइक ब्रो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच फर्स्ट, उसके बाद मुझे बताना कि तू ऐसा कर सकती है. एंड दिस सोलोमन्स पैराडॉक्स इसे नाम इसलिए मिला है बिकॉज देयर वाज दिस किंग कॉल्ड सोलोमन एंड सेम वाज द केस विद हिम. वो बहुत बड़े बड़े एडवाइस देता था लोगों को लेकिन खुद की पर्सनल लाइफ में इतनी पुअर चॉइसेस थी उसकी, पुअर जजमेंट थी उसकी कि यू नो थिंग्स वर नॉट गोइंग राइट इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ हिज जजमेंट एंड हिज चॉइसेस. एंड दैट्स वेयर दिस पैराडॉक्स केम फ्रॉम, सोलोमन्स पैराडॉक्स. यू टेल मी कितनी बार हुआ है जिंदगी में. मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है भाई साहब, इसीलिए आई कुड रिलेट सो हार्ड विद दिस. आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है. 3311-1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444-1063 पर. सैनिक ब्यूटीफुल ट्रैक काफी है फ्रॉम मुसाफिर कैफे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas. World's favorite jeweler.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: दस मॉर्निंग, हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन वीडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: 106.3 FM Gio Bendaz.
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाए। स्मार्ट शॉपिंग करे, रिवॉर्ड पाए, ज्यादा मुस्कुराए, सिर्फ लूनो हाइपरमार्केट में।
2: लूनो, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
4: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
5: रेडियो 106.3
2: जियो बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो।

अरिजीत सिंह और रूपाली की आवाज में बधाई दो मूवी से अटक गया है. बड़ा ही सुंदर गाना है यार, मतलब कितने प्यार से गाता है अरिजीत सिंह. यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. और सेहत की बात कर लें, दिमाग की स्पेसिफिकली. वेलनेस फिक्स में ब्रेन की बात करते हैं. सो हमें लगता है कि भाई ब्रेन में जो चीजें बिठा ली हैं वही हो रही हैं. ये सही लगता है? जी हाँ, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव थिंग्स, यू नो, यू एफर्मेशन जिसे कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन. सुबह उठ के आप अच्छी चीजें बोलो कि भाई आज तो मेरा दिन एक नंबर जाने वाला है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास ये काम है, आई एम गोना फिनिश दिस, आज वो मीटिंग है, आई एम गोना एक्सेल एट दैट, और जितना भी काम है मैं अपने टाइम से पहले खत्म कर लूंगी. इफ आई हैव डिसाइडेड दैट, कोई रोक नहीं सकता मुझे, बिकॉज बेसिकली आवर ब्रेन वर्क्स फॉर अस. इट्स नॉट दी अदर वे राउंड कि हमें अपने ब्रेन के लिए काम करना है. नो, इट वर्क्स फॉर अस. तो आप उसे जो भी बताओगे ना कि दिस इज राइट, वो मान लेगा. उसका कोई राइट और रॉन्ग का जजमेंट खुद का नहीं होता है, आप ही उसे वो बता रहे हो. अगर आपने कोई नेगेटिव चीज सोच ली है कि मेरे साथ यही होना है, तो आपका ब्रेन विल ट्राई टू फाइंड, यू नो, रीजंस टू मेक यू बिलीव इन इट मोर. जो चीज आप चाहते हो वही चीज आपका ब्रेन आपको बिलीव करवाएगा. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज कीप सेइंग कि सुबह उठ के ना अच्छी सी बातें करनी है खुद से कि यार व्हाट एन अमेजिंग डे इट इज, आज तो बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, आज तो कुछ भी हो जाए, कोई मुझे कुछ भी बोले, मेरा मूड बिल्कुल खराब नहीं होगा. ऑल दीज, यू नो, पॉजिटिव एफर्मेशन जब आप खुद को देंगे तो आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे ना. दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स मेरी जान. योर ब्रेन डज दैट फॉर यू. सो प्लीज, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी इधर उधर की फालतू बातें किसी की सुन के दिमाग में बिठा ली है, उन्हें जगह नहीं देने का है, निकाल के बाहर फेंक दो. समझ रहे हो बात को? हाँ जी. सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट होने वाला है. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास. कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर. आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तरह से आदत नहीं हुई है. यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू राइट कि अभी पानी इतना ज्यादा गर्म आ रहा होता है, इफ यू टर्न ऑन द शावर इन द मॉर्निंग ऑल्सो इट इज लाइक बॉइलिंग हॉट. एंड यस्टरडे आई फॉरगॉट टू कीप वाटर लाइक इन द बकेट. और आज सुबह जो ही मैं उबलते हुए पानी से शावर लेकर आई हूँ, पूरी नींद खुल गई मेरी. तो मेरी सुबह तो 4 बजे हो ही चुकी थी. जिनकी नहीं हुई है, गुड मॉर्निंग मेरी जान. एंड दोज हु आर ऑलरेडी ऑन द वे टू वर्क, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, आराम से ड्राइव करें, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे बतानी थी कि कुछ नया शुरू होने वाला है रेडियो ऑलिव पर. यस, एक बहुत ही कमाल की चीज़ आने वाली है. और वो क्या चीज़ है जो इंसान लेकर आ रहा है, उन्हीं से सुनते हैं.
1: Hi everyone, my name is Indika. I'm the Startup Grind chapter director in Qatar. So Startup Grind is a program that we do to bring the startup community in the country together as a community and give them opportunities to shine and excel in what they do. And I'm pleased to be here today at the studio at Radio Olive because we are just launching dedicated show for startups in Qatar called Yalla Startups. And it's going to be an amazing show where we are going to bring a startup to the studio every week to talk about their journey and how their products and solutions are going to make an impact in people's lives, whether it's a fintech or a health tech or an e-commerce solution, and how listeners of Olive Radio can use these technologies for their lives as well. So, pleasure to be here today and looking forward to the show.
0: Wow, that exactly. So, if you are an aspiring entrepreneur or you know, aapne abhi abhi apna startup shuru kiya hai, ya fir process mein hai shuru karne ki, ya fir soch rahe hain, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ रेडियो ऑलिव पर विद यल्ला स्टार्टअप्स. यस, सुपर सून रेडियो ऑलिव पर आने वाला है ये. सुबह सुबह आप सुन सकेंगे एंड आई विल लेट यू नो कब कौन कहाँ आ रहा है, सब कुछ सारी डिटेल आपको यहीं रेडियो ऑलिव पर मिलेगी. तो आपने क्या करना है, आपने बस ट्यून इन करके रखना है, मुझे सुनते रहना है. जी हाँ, नथिंग एल्स. बढ़िया गाने तो देखो मैं चला ही रही हूँ, साथ में अब आपका जो स्टार्टअप ड्रीम है उसको भी फ्यूल करने वाले हैं. स्टे ट्यून एंड जियो विद अस मेरी जान.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: पापोन की आवाज में बड़ा ही प्यारा गाना सुल्तान मूवी से बुलिया। एंड यहाँ पे मुझे प्रिंसन का मैसेज आया है, आवाज दो हमको गाना जो मैंने अभी चलाया था कुछ देर पहले, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं बिकॉज इट्स हिज फेवरेट। वेल गेस व्हाट प्रिंसन, सेम पिंच, मेरा भी फेवरेट है वो गाना। एंड आई डोंट नो व्हाई आई गेट दिस वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल फीलिंग एज सून एज आई हियर दैट सॉन्ग। एंड आई रिमेम्बर लाइक इन माई प्रीवियस जॉब व्हेन आई वुड लिसन टू दैट ट्रैक, ऐसे दो तीन बार लूप पे चलता था, उसके बाद ही मुझे सुकून मिलता था, आराम मिलता था कि ओके फाइन ना ओके आई कैन मूव ऑन टू अनदर सॉन्ग, अदरवाइज आई वुड जस्ट स्टिक टू दिस वन। एंड आई हैव नॉट इवन सीन दैट मूवी बट आई लव दैट ट्रैक। तनीषा के साथ है आप रेडियो 106.3 एफएम पर, ऑली बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है। मैंने कहा था ना ऑलिव रिचार्ज बैठा ही रहता है जुबान पे, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। एंड आई फाउंड आउट देयर इज अ वेबसाइट जहाँ पर आप एनोनिमसली जाकर कंप्लेन कर सकते हैं अपनी बॉस की, एंड दैट पर्सन विल आइदर कॉल द बॉस और जस्ट गो टू द बॉस एंड देन येल एट देम। या क्या कर रहे हैं लोग, मतलब हमारी मिजरी, हमारे एंगर, हमारे फ्रस्ट्रेशन को भी इन्होंने मोनेटाइज कर लिया भाई, क्रेजी हो रखी है ये दुनिया। और आपको याद दिलाना था मुझे कि सोशल मीडिया पर जाइए फटाफट से, radioalive.qsd हैंडल इफ यू हैवंट फॉलोड अस येट। क्या कर रहे हो यार, जाओ ना जल्दी जाओ चेकआउट करो, वी कीप पोस्टिंग वीडियोस ओवर देयर, देयर इज अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, यू नेवर नो यू माइट विन समथिंग गुड। और फिलहाल भेज रही हूँ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।
1: Radio Olive Bar.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
1: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Ola 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal rahe hain yahan par. And right now, I have someone really special with me. So, Ahmed Al-Maghribi ke baare mein to hum sab jante hain. Bhai, I fell in love with the perfumes here because of Ahmed Al-Maghribi. Maine itne saare perfumes unke, use kar chuki hoon so far. And mera ek signature scent bhi ban chuka hai wo. There is Lathani, which I absolutely love. There is Lavender Oud, which I love. And naya jo mujhe pasand aaya hai, wo, I don't know if I'm saying that right. It's Ahl. I love that fragrance and it just makes you feel so luxurious, so warm, so royal. Yes, and I have Mr. Saif Al-Hashmi with me, who is the marketing head of Ahmed Al-Maghribi. Welcome, Saif ji.
2: Alhamdulillah, main theek hoon. First of all, thank you very much for having me in your studio. Aur actually, aapka radio main kaafi saalon se sun raha hoon. And to be honest, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब भी मैं गाड़ी ऑन करता हूँ तो मैं आप ही का रेडियो सुनता हूँ.
1: That is so sweet. सबसे अहमद अल-मगरिबी के बारे में तो हमने बहुत सारी भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, लाइक हाउ डिड यू गॉट दिस जॉब, इसके पहले आप क्या कर रहे थे, अपने बारे में कुछ बताइए हमें.
2: जी, एक्चुअली मैं अहमद अल-मगरिबी से पहले ही मार्केटिंग और इवेंट्स और एग्जीबिशन वगैरह में ही था मैं. और जब अहमद अल-मगरिबी की तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अहमद अल-मगरिबी एक ऐसा ब्रांड है जो कि मतलब अपने सिर्फ खुशबू नहीं बेचता, बल्कि वो खुशबू के ज़रिए अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और मतलब ट्रस्ट बेचता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा अहमद अल-मगरिबी ज्वाइन करके. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ.
1: Wow, that's amazing and I absolutely second that. Ki wo khushboo ke saath saath trust or emotions or feelings bhi bechte hain. I agree with that. Abhi bahut sari baatein karenge Saif ji se, aap sunte rahiye Radio Ola, Chhupandaz.

0: All F Short Break. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हेलो नमस्कार, मम्मी मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव।

0: Tanisha.
1: Abhijit Bhattacharya ke awaaz mein, I'm the best from the movie Phir Bhi Dil Hindustani, only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath Bindaas Mornings chal rahe hain yahan par, and we are in conversation with Saif Al Hashmi, jo ki marketing head hai Ahmed Al Maghribi ke. So Saif, tell me what makes Ahmed Al Maghribi so unique? Kya ek alag baat hai baaki jitne bhi fragrance brands hain unse sabse alag Ahmed Al Maghribi ko kya banata hai?
2: एक्चुअली मेरे ख्याल में अहमद अल मगरबी की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है उसकी क्वालिटी, यूनिकनेस और ट्रस्ट. क्योंकि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम मतलब जितने भी परफ्यूम्स तैयार करते हैं और ऑयल्स वगैरह भी, तो उसमें हम मतलब द हाईएस्ट क्वालिटी हम रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज़, क्योंकि हमारे पास हर हर एज के लोगों के लिए परफ्यूम है, हर पर्सनैलिटी के लोगों के लिए परफ्यूम है, हर ओकेशन के लिए परफ्यूम मौजूद है. इवन दो अगर आपको ऊदी परफ्यूम पसंद है, स्वीट पसंद है, यूनिक पसंद है, स्पाइसी नोट्स, तो हमारे पास हर किस्म के परफ्यूम्स अवेलेबल होते हैं.
1: वाओ, एंड आई अग्री विद दैट कि हर एज ग्रुप के लिए, हर ओकेजन के लिए स्पेसिफिकली वी विल गेट अ परफ्यूम एट अहमद अल मगरबी. वी विल नो मोर अबाउट इट इन अ बिट. कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 3 बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: आनंद राज आनंद और सुनिधि चौहान की आवाज में कांटे मूवीज इश्क समंदर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स पर हम बात कर रहे थे सैफ अल हाशमी साहब के साथ जो कि मार्केटिंग हेड है अहमद अल मगरबी के. सो सैफ टेल मी अहमद अल मगरबी ये जो ब्रांड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये बेसिकली है कहाँ से एंड हाउ मेनी ब्रांचेस डू यू गाइस हैव?
1: जी एक्चुअली अहमद अल मगरबी को 25 साल हो गए. एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग अवर 25th एनिवर्सरी. और ये बेसिकली इमारात से है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 94 कंट्रीज में हमारी प्रोडक्ट्स हैं और कतर में हमारी 19 ब्रांचेज हैं.
0: Wow, that's huge. 94 countries and Qatar mein hi 19 branches hai. That is absolutely amazing. I want to know one last thing from you, Saif. आपका सबसे फेवरेट कौन सा परफ्यूम है अहमद अल मगरबी का? इफ यू वांट टू सजेस्ट समबडी कि भाई इस फ्रेग्रेंस के लिए जाओ तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे?
1: एक्चुअली आई एम ए परफ्यूम लवर बाय मायसेल्फ लेकिन हमारे परफ्यूम्स इतने अच्छे हैं कि कोई एक हम रिकमेंड नहीं मैं खुद कर सकता. लेकिन कुछ परफ्यूम्स फॉर एग्जांपल इग्नाइट हूद वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम मेरे ख्याल में क्योंकि सेम टाइम पे आपको अरेबिक भी फील होता है फ्रेंच भी. उसके अलावा मर्ज इस टाइम हमारा जीसीसी का सबसे फेमस परफ्यूम है. उसके अलावा बिन शेख सर्दियों के लिए बहुत खास परफ्यूम है माशाल्लाह. और सादेक राउदा एक्चुअली डिफरेंट ओकेशंस के लिए डिफरेंट परफ्यूम है बट माय पर्सनल फेवरेट मर्च एंड इग्नाइट हूद.
0: वाओ दैट्स अमेजिंग. सो यू गाइस नो नेक्स्ट टाइम इफ यू हैवंट यूज्ड इग्नाइट हूद एंड मर्च सो फार तो नेक्स्ट आपने यही खरीदना है. थैंक यू सो मच सैफ फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर अस एंड टेलिंग अस अबाउट दिस अमेजिंग ब्रांड विच वी ऑल लव और हमारे हर दिन का हिस्सा होता है ये. राइट ऑन दैट नोट सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: OLF शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर ये एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: दिलजीत दोसांझ की आवाज में लवर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा है आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे जाने का मेरी जान अब मिलेंगे कल सुबह 6 बजे आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है ठीक है बहुत सारा पानी पीते रहिए स्टे हाइड्रेटेड ईट लाइट फूड और बहुत सारा सनस्क्रीन लगा कर ही बाहर निकले आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं यार अपना ख्याल रखा करो ठीक है एंड इफ़ यू हैवंट फॉलो अस ऑन radioolive.qa सोशल मीडिया पे हर जगह इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक स्नैपचैट यूट्यूब सब जगह फॉलो कर लो जी बिकॉज वी कीप पोस्टिंग थिंग्स फॉर यू तो आप तक वो पहुँचना भी तो ज़रूरी है तो जाइए फॉलो कीजिए एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद अस बिंदास आके मैसेज कर सकते हैं 3311 1063 पर और यू कैन कॉल 4444 1063 पर और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास हैव अ नाइस डे मेरी जान

देखिए जी, दिल का कसूर तो बस इतना सा है कि ये आपसे प्यार करता है और आपसे बातचीत करने के लिए हर रोज यहाँ पर आ जाता है 106.3 रेडियो ऑलिव पर। तो जी कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की जो है कोशिश हम जारी रखते हैं। अब देखिए यार, मतलब दिल जो है आप लोगों से इतना प्यार करता है कि आप लोगों से जो है बातें किए बिना रह भी नहीं सकता है। पता है मुझे जो है सच में चाय पीने का मन ही नहीं करता अगर मैं आप लोगों से बात नहीं करती। तो बस इसीलिए आ गई हूँ मैं अपनी बातचीत जो है इधर उधर की जो है गॉसिप्स लेकर, इधर उधर की बातचीत लेकर। कुछ काम की बात करेंगे और कुछ बात करेंगे जिससे हम काम जो है वो निकाल लेंगे। 3311063 ये जो है मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है। सो इस पर आकर आप मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज कर सकते हैं, आपके मन में कोई और जो है थॉट आ रहा है आप वो मैसेज कर सकते हैं, कुछ नहीं तो सिर्फ हाय हेलो कशिश ही लिख दो ना तो भी चल जाएगा। सो बस देखिए यार, आज के शो की शुरुआत जो है हम करने वाले हैं फिर से कॉकटेल टू के गाने के साथ। तो देखो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है लिखित में दे देना चाहिए कि मेरे शो का पहला गाना कॉकटेल टू से ही होगा। सो फिलहाल जो है जब तलक गाने का नाम है ये आएगा आपके रेडियो सेट्स पर। इसके बाद जो है हम अपने शो को जो है एकदम तूफानी स्पीड से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे एंड बहुत सारी अमेजिंग चीजों के बारे में बात करेंगे। मूवी रिकमेंड करूंगी मैं आपको, फैशन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो बताऊंगी, बॉलीवुड का क्या हाल चाल है ये भी बताऊंगी, किसका कमबैक होने वाला है और कौन बॉलीवुड को टाटा बाय बाय बोलने वाला है, ये सब हम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले जब तलक जो है गाना इंजॉय करो और बाकी आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया है. स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:11, दैट इज 10:11. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव.

0: निधि मोहन की आवाज में ब्यूटीफुल वाला ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आरएफ पे। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए बातचीत हम कर रहे हैं। एंड यार देखो, बाहर मौसम ऐसा हो रहा है कि मुझे जो है बिल्कुल भी, मतलब ऐसे मोटे फैब्रिक के कपड़े पहनने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि मस्त अपने जो नॉर्मल कॉटन की कुर्ती होती है वो पहन लूँ, और वही आज मैं कर भी आई हूँ। लेकिन फिर मुझे जो है ऑफिस के अंदर एंटर करने के बाद रियलाइज हुआ कि यार कशिश, एसी में तो ठंड लगती है, अब क्या किया जा सकता है। सो देखिए यार, कोई बात नहीं है, आप जो है तैयारी के साथ चलिए, एक जैकेट या एक जो स्टोल है वो कैरी कीजिए, वरना आपको जो है ऑफिस में ठंड लग सकती है। एंड गर्मी के मौसम में जब सर्दी लगती है, जब कोल्ड कफ होता है, तो बहुत बुरा लगता है। एंड लोगों को क्या बताओगे कि यार मुझे ना थोड़ी सी सर्दी हो गई है, गर्मी के मौसम में सर्दी हो गई। फिलहाल देखिए, आपको जो है मैं टेम्परेचर बताने के लिए आ गई हूँ कि मौसम का जो माहौल है, जो मौसम का मूड है, वो कैसा हो रहा है इस वक्त। तो 38 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का करंट टेम्परेचर है, जो कंपैरेटिवली पिछले कुछ दिनों में काफी कम है, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर भी काफी कम रहने वाला है, दैट्स 39 डिग्री सेल्सियस। हाँ, आप लोग हंस सकते हो मेरे ऊपर कि मैं इस टेम्परेचर को थोड़ा कम बोल रही हूँ, लेकिन जिस हिसाब से हम टेम्परेचर झेल रहे थे उसके हिसाब से तो देखो कम ही है। सो हाईएस्ट टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। सो देखिए यार, आपको बस इतना ही करना है कि पानी पीते रहना है, हाइड्रेटेड रहेगी ना बॉडी, तो गर्मी का सर्दी का कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिलहाल देखिए, इस हीट को बीच करने के लिए थोड़ी म्यूजिकल बीच की जरूरत पड़ने वाली है आपको, इसी वजह से आपके लिए जो है कूल सॉन्ग ऑफ द आवर में लेकर आ गई हूँ। एंड एक बहुत ही स्पेशल गाना है, हमारी बातचीत जो हो रही है ना उससे मिलता है जुलता सा गाना है। सो जल्दी से गाना एंजॉय करो एंड 3311063 पर आकर यार कुछ तो मैसेज कर दो मुझे, बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी वरना।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: मैं हूँ आपकी कजन और मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदा।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

आपने ये नोटिस किया कि आज प्लेलिस्ट में हमें ऐसे गाने जो है वो सुनने को मिल रहे हैं जो या तो 90s के हैं या तो अर्ली 2000 के हैं और इतने कॉमन नहीं है. तो यार देखो, अगर आप जो है आप खुद प्ले करते हो गाने तो कई बार जो है रिपीट पे गाने चलने लग जाते हैं ना, आप बोर होते हो. देखो यार, ऐसी वैरायटी और कहाँ मिलेगी सिवाय 106.3 रेडियो एलिव के. ध्यान से सुनो, हो सकता है कि कोई रील के लिए या स्टोरी के लिए जो है नया गाना मिल जाए आपको, है ना. मैं हूँ आपकी कज़न शो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए मैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए आ चुकी हूँ. अब देखिए यार, मैंने आप लोगों से बस ये इल्तिजा की थी छोटू जी की, यार मेरे को बताओ कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और बस एक मैसेज कर दो. तो देखिए, आसमा जी ने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने लिखा है एक प्यारा सा कोट, मोटिवेशनल कोट. सो व्हेन यू वेक अप आस्किंग व्हाट्स रॉन्ग, यू विल फाइंड प्रीटी दैट्स रॉन्ग.

जो है वो लीड रोल में दिखने वाले हैं। मूवी का नाम है स्पिरिट। उसमें से जो है दीपिका पादुकोण ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो अब ऐसा हो सकता है कि दीपिका पादुकोण की जगह इस मूवी में कैटरीना कैफ जो है वो हमें एक्टिंग करते हुए दिख जाए। डिस्कशन स्टेज पर है अभी सब कुछ, तो अभी कुछ फाइनली कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कैटरीना कैफ के फैंस के लिए इतनी बड़ी न्यूज जो है वही काफी है। कोई बात नहीं यार, मतलब पूरा यू नो पूरा केक ना सही, लेकिन एक पेस्ट्री तो मिली है, एक टेस्टर तो मिल गया है हमें। मैं हूँ आपकी कशिश, बहुत सारी बातचीत जो है अभी जारी रखने वाले हैं। थोड़ी सी देर में आपको ये बताऊंगी कि कौन सा ऐसा फनी तरीका है जिससे आप अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर सकते हो। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रिव्यू सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी बिंदास।

यार ये एक ऐसी चीज है ना जिसे सुनने के बाद अपने आप पॉजिटिविटी जो है वो मेरे खून के साथ मेरी रगों में बहने लग जाती है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम काम करते हैं। तो मैं ना ये कह रही थी, अब आप सोचेंगे कि कशिश यार ऐसे क्यों बात कर रही हो, ये स्लो मोशन में क्यों बात करने की कोशिश तुमने की, गंदी वाली कोशिश। तो मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप हर काम स्लो मोशन में करना शुरू कर देंगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। हाँ, मतलब मैं जो है फास्ट फॉरवर्ड में बताती हूँ कि आखिर है क्या। सो रिसर्च में ये पता लगा है कि अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है, सपोज आपका जो है पार्सल जो आपने ऑर्डर किया है वो लेट हो गया, या आपकी जो है अब डेडलाइन पे आपने PPT सबमिट नहीं करी, आपका फ़ोन जो है उसका स्क्रीन क्रैक हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं ना, इससे जो है लड़ने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका बताया है कि आप क्या कर सकते हो। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो अपना डेली लाइफ का प्रोसेस है एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए उसको स्लो मोशन में करना है। मतलब जैसे हमारी बॉलीवुड की मूवीज में या साउथ की मूवीज में हम देखते हैं ना, हर सीन को स्लो मोशन में कर दिया जाता है, चाहे वो ब्यूटी सीक्वेंस हो चाहे वो फाइट सीक्वेंस हो। सो सपोज आपको जो है माइक्रोवेव के ऊपर रखी हुई बॉटल जो है वो उठानी है, सो आप स्लो मोशन में उस बॉटल की तरफ जाएंगे, स्लो मोशन में वो बॉटल उठाएंगे, स्लो मोशन में ही उसका ढक्कन जो है वो खोलेंगे, स्लो मोशन में ही पानी पियेंगे, एंड इसके बाद क्या है आपको खुद पे हंसी आ जाएगी एंड फिर आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, तो आपका स्ट्रेस जो है वो छू मंतर हो जाएगा। देखो यार, आई नो बहुत सिली जो है तरीका है, आई नो आप बोलोगे कि यार कशिश ये क्या स्टूपिड तरीका है, इतने सीरियस इशू जो है वो होते हैं लोगों को और वो कंसल्ट करते हैं डॉक्टर्स को और तुम बोल रही हो कि स्लो मोशन में काम करने से जो है सब ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट एटलीस्ट छोटे मोटे स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमें खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना। कब तक हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे कि ये जो है हमारी बात सुनेंगे तब हमारा स्ट्रेस कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना यार। तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो हमें खुद करनी पड़ेंगी, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये जो तरीका है ये बता दूँ। अब आपको करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है, अगर करो और अगर ये वर्क करे तो 3311063 पर अगर मुझे ज़रूर से बता देना, तो उससे क्या होगा ना कि बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी, बाकी लोग एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे, मैं भी ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी ये वर्क करता है या नहीं करता है। बस अभी स्ट्रेस नहीं मिला है मुझे कुछ। फिलहाल ऑल फ्रेंड सॉन्ग ऑफ द आवर जो है यार आपकी रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय करो, फ्रेश फ्रेश गाना है, सो फ्रेश फ्रेश होके सुनना एंड उसके बाद जो है आपकी रेडियो सेट्स पर आएगी ऑल अपडेट, जहां पर सारी जो खबरें हैं आपको जो आपकी जानना जरूरी है वो सब आपको मिल जाएंगी। सो फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी ओपन दस।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड win.

0: Check. Brought to you by Dhanat Alpahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alcohol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:09. दैट इज 11:09. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: Hi everyone, this is Benny Dayal here.
5: Benny Dayal here.
4: Olive Radio 106.3.
5: Jio Bindas.
4: Jio Bindas.
6: Olive Suno Radio.

0: जिसको नहीं भी पता है ना वो भी ये बता सकता है कि शंकर महादेवन का गाना था ये। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाते हैं हम मिलकर। अब देखिए यार, मैं जो है ये जो सेगमेंट है मेरा जिसे मैं लेकर आ गई हूँ, इस सेगमेंट पे हर रोज कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल, नॉट ज्यादा कंट्रोवर्शियल पर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल जो है आप लोगों के बीच में डिबेट शुरू करने की कोशिश करती हूँ। तो कल हमने बात करी थी कि यार फोटो कौन अच्छी खींचता है, लड़के या लड़कियाँ, और आज जो हमारी डिबेट है काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर भी भारी पड़ सकती है। सो रिसर्च जो है वो ये कहती है कि जब सभी कलीग्स मिलकर अपने बॉस की बुराई करते हैं एक दूसरे से, तो जो है उनके बीच की बॉन्डिंग जो है वो बढ़ती है एंड काम करने के लिए मोटिवेशन जो है वो आता है। बताइए यार ये क्या बात हुई। सो आप मुझे बताइए कि जब सब लोग मिलके बॉस की जो है बुराई पे बॉन्ड करते हैं तो क्या इससे सच में मोटिवेशन मिलता है। बाकी इस रिसर्च की पूरी सच्चाई क्या है वो मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की ओपिनियन जो है वो जानना चाहती हूँ। 3311063 ये जो है वो मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है। आज संडे का दिन है, आज आपने शुरुआत की होगी अपने काम की, नए टारगेट्स आए होंगे, बॉस ने जो है वो पूछा होगा कि जो पुराने टारगेट्स थे वो हुए या नहीं हुए, ये सब होगा। तो यार जल्दी से जो है अपना फ़ोन उठाओ 3311063 पर आके मुझे ये बता दो कि यार बॉस की जो है या मैनेजर की अगर सब मिलके बुराई करते हैं, सारे कलीग्स मिलके, सारे टीम वाले मिलके बुराई करते हैं, तो क्या ऐसे मोटिवेशन मिलता है। वैसे देखो अगर मोटिवेशन मिलता है तो हमारे बॉस तो हमें मोटिवेट करने के लिए जानबूझ के हमें मौका देंगे कि यार ठीक है मुझे रोस्ट कर लो, पर एटलीस्ट काम करके दो, क्योंकि तुम लोग गॉसिप में पूरा टाइम वेस्ट करते हो, काम तो करते ही नहीं हो, फिर बोलते हो कि बॉस जो है वो डांट रहा है। सो बताइए मुझे 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे इंजॉय कीजिए। बाकी इस रिसर्च की सच्चाई कि क्या ऐसा है या नहीं है ये मैं बताऊंगी आपको थोड़ी सी देर में। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

गाने का नाम चोरी पे चोरी। अब देखिए यार, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आप जो है आप बैठे अपने चार ऑफिस के दोस्तों के साथ चाय पीते पीते जो है अपने बॉस की जो है बुराई कर रहे हैं, एंड अचानक से पीछे से जो है आपके कंधे पे एक हाथ आता है और वो कहता है कि हाँ बहुत दिक्कतें हैं तुम्हें मुझसे। फिर आप जो अपनी यू नो वर्ड्स को बदलने की कोशिश करते हो, ऐसे जी जान लगा देते हो, मतलब इतनी जान लगा देते हो कि अगर इतनी जान काम पे लगा देती तो बॉस की बुराई करने का जो है आता ही नहीं सीन कहीं। एंड जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम आपकी लाइफ को मस्त बनाने की यार कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए, मैंने जो है थोड़ी देर पहले आपको एक रिसर्च बताई थी जिसमें ये लिखा है कि यार अगर लोग जो है वो साथ में मिल गए अपनी बॉस की थोड़ी सी बुराई करते हैं तो जो है इससे उनको मोटिवेशन मिलता है एंड बीच का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी टीम बॉन्ड जो है वो अक्सर बॉस की बुराई पर हो जाती है। अब यार देखो, अगर किसी का बॉस बहुत अच्छा हो तो फिर क्या किया जा सकता है, राइट? तो मैं ना ये जो आपसे सवाल पूछने के बाद मैं स्टूडियो से बाहर गई, मैंने जो है तनीषा से पूछा कि तनीषा इस पे आपका क्या व्यू है। तनीषा ने कहा यार हो सकता है देखो, पर क्या होता है ना कि बॉस बॉस पे डिपेंड करता है। अगर आपके बॉस इतने अच्छे हैं कि आपकी टीम में उन्होंने बहुत सारा प्यार जो है वो फैला के रखा है तो फिर तो आपको बुराई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

पर जो है ये बातचीत जो है वो मजाक है और कहाँ पर नेगेटिविटी जो है वो पार हो रही है एंड आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह फिर कम होती जा रही है. आपको जो है हर चीज में फिर गलत प्रोस्पेक्टिव ही दिखेगा कि यार ये तो हमेशा मेरे से ही काम कराते हैं, हमेशा ये तो हमें ही रोक के रखते हैं. पॉजिटिविटी देखना जरूरी है और बाकी थोड़ी बहुत जो है बुराई अगर कर ली जाए तो कोई गलत बात नहीं है. लेकिन लेकिन लेकिन किसी को मेंटली अफेक्ट नहीं करना चाहिए. क्या पता कि आप अपने बॉस की बुराई कर रहे हैं एंड वो उनकी इमेज के लिए और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, है ना. तो इसलिए सोच समझ के कीजिएगा. बाकी अगर आपको जो है किसी की गॉसिप मुझसे करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं. आपकी गॉसिप गर्ल यहाँ पर है. 3311063 इज माई नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए. फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी उपदास.

वैसे तो आज संडे है, लेकिन जुम्मे की रात वाला गाना सुनने के बाद मन करता है कि यार काश आज जुम्मा होता, काश आज जुम्मा होता तो हमारी छुट्टी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अमेजिंग वाले गाने आपको सुनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बिजी हैं, आप स्ट्रेस में हैं। सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग गानों के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, और फिलहाल ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे इंजॉय कीजिए। उसके बाद आने के बाद हम ये बातचीत करेंगे कि यार फैशन की दुनिया में क्या कुछ खास चल रहा है। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

तड़प मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को मस्त बनाने के लिए बातचीत हम करते रहते हैं। एंड देखिए यार, अब वक्त आ गया है उस सेगमेंट का जिस सेगमेंट में हम बातचीत करते हैं फैशन के बारे में। लेकिन फैशन से मुझे एक चीज याद आ गई कि यार गाइज, हमारे फैशन करने के पीछे का मोटिव क्या होता है? अपने आप को फील गुड कराना, या जो है बाकियों को दिखाना कि यार देखो हम कितने अच्छे दिख सकते हैं, हम कितने फैशनेबल हैं, या बस अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। ऐसे ही एक जो है, मैं रील स्क्रॉल करते करते एक रिसर्च पे पहुंची जहां पर ये बता रहे थे कि यार जब हम अपने नेल्स कराते हैं, यानी मैनिक्योर कराते हैं, यू नो नेल एक्सटेंशन कराते हैं, या उस पर अच्छी सी नेल पेंट कराते हैं, नेल आर्ट कराते हैं, तो वो हमें इतना अच्छा क्यों लगता है? सिर्फ एक ये रीज़न नहीं है, क्योंकि वो सुंदर होता है इसलिए हमें अच्छा लगता है, खूबसूरत होता है, डेलिकेट दिखता है, प्रिटी आता है फोटोज़ में, इसलिए हमें अच्छे लगते हैं नेल्स। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसको जो है एक फिनोमेना को एक नाम दिया गया है स्पेशली। एंड इस फिनोमेना में क्या होता है कि आपको हर वो चीज़ अच्छी लगती है जिसमें एफर्ट और पैसे जो है वो लगाए गए हों। इसीलिए जब भी आप हिना आर्ट करते हैं, जब भी हम हाथ में मेहंदी लगाते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार चलो बढ़िया है, मतलब ये एफर्ट और टाइम के साथ जो है हमने ये चीज़ की है। इसीलिए कई बार जब आप बाहर से नेल्स जो है वो कराते हो तो आपको अच्छे लगते हैं, बाकी लोगों को भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रोसेस में टाइम और एफर्ट दोनों लगे हैं, ना आपने ये दोनों लगाए, इसीलिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई ऐसी चीज देखें जो आपको बहुत खूबसूरत लग रही है, एक बार जो है उसे फिर से ट्राई देना कि यार ये आपको जेन्युइनली खूबसूरत लग रही है, या ये बस टाइम और पैसे एफर्ट बहुत लगाए इसीलिए आपको अच्छी लग रही है, सोच के बताइए जरा। वैसे नेल आर्ट में इस वक्त में बात अगर करूँ तो ब्लू कलर जो है वो काफ़ी इन ट्रेंड है। सो अगर आप सोच रहे हो कि यार अपने समर नेल्स कराने हैं, क्या करा ले, सो बीची समर नेल्स जो है इस वक्त काफ़ी इन ट्रेंड है, वो आप देख सकते हैं। और अगर देखो यार बाहर से नहीं भी कराना है, तो एक अच्छा सा यू नो बेबी ब्लू, डस्ट ब्लू कलर का जो है आप कलर लीजिए, उन्होंने अपनी नेल्स पे लगाइए, बहुत अमेजिंग, बहुत प्रिटी लगेगा। एंड हर कलर यू नो स्किन टोन को ये जो है सूट करता है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना दिल वाले चोर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, मूवी का नाम पति पत्नी और वो दो, इंजॉय कीजिए। और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: trek. Brought to you by Nanad Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11. दैट इज 12:11. स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: हाय गाइस, दिस इज अबार फतेह खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिंपिक.

0: दोस्ती के चलते जो है वो मैंने सुना दिया है आपकी, और मेरी दोस्ती जो है ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और गहरी होती रहेगी। लेकिन एक ऐसी दोस्ती है जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते, और वो दोस्ती है हमारी हमारे नेचर से, इन्वायरमेंट से, पेड़ पौधों से, हमारे आस पास की चीजों से, एंड इनका ख्याल रखना हम अक्सर भूल जाते हैं। अब देखो यार, अभी दो दिन जिस दोस्त से मिले हुए हुए हैं उसके लिए हम केक, पेस्ट्रीज, बुगेस सब भेजने लग जाते हैं, उसके लिए जो है अब स्टोरीज लगाने लग जाते हैं। लेकिन जिस नेचर के साथ हम इतने टाइम से रह रहे हैं उसके लिए हम क्या करते? कुछ भी नहीं। बस इसीलिए यार, कुछ लोग जो अपने नेचर को एक अच्छा दोस्त मानते हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा करने के लिए एक इनिशिएटिव जो है वो चालू किया है और एक ऐसा प्लास्टिक बनाया है जिससे पैकेजिंग में यूज किया जा सकता है, एंड वो कुछ सर्टेन एनवायरनमेंट अगर उन्हें दिया जाए तो वो 2 से 3 दिनों में डीकम्पोज हो सकती है एंड एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान उसके बाद नहीं पहुंचेगा। देखिए ऐसे डिस्कवरीज जो है वो डेली हो रही है एंड डिस्कवरीज होती रहेंगी। वो साइंटिस्ट जो है वो अपना काम कर रहे हैं, आपको और मुझे अपना काम करना है। जितना जो है प्लास्टिक बैग्स का हम कम यूज कर सकते हैं उतना कम यूज करें, एंड अगर उन्हें यूज कर रहे हैं तो उन्हें इस तरीके से स्मार्टली यूज करें कि हमारी इन्वायरमेंट पे जो है उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। आप उसे रिसाइकल कर सकते हैं या उसको रीयूज कर सकते हैं। सो बस यही कहते हुए स्कूल एडवाइस के साथ को संग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। फितूर मूवी का टाइटल ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत ये जो गाना है। मूवी भी विजुअली काफी खूबसूरत थी, स्पेशली अगर मैं कैटरीना कैफ के बालों की बात करूं तो ओ माय गॉड, उसी के बाद मैंने अपने बाल लाल कराए थे। एंड खैर मैं कैटरीना कैफ जैसी तो नहीं लगी, लेकिन कोई बात नहीं, खूबसूरत तो थी। देखो फिलहाल ये गाना एंजॉय करके आओ और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल एफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

यार भाई मेरे को वो एरा बॉलीवुड का बहुत ज्यादा पसंद था, जब गानों में ना लिरिक्स से ज्यादा छन छना ना जुबी डुबी डुबी डुबी ये सब होता था। मतलब ये जो है फीलिंग्स हैं, इन्हें आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या छन छनाननम का मतलब क्या है, क्या होता है मतलब छन छनाननम का? वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिपर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर हम आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। एंड यार देखिए, अगर आप मेरे जैसे हैं, यानी आप भी अपने पासवर्ड्स भूल जाते हैं एंड आपको बार बार उन्हें फॉरगेट करके रिकवर करना पड़ता है, तो गूगल आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वाली चीज ला चुका है। अब इसमें मैंने बहुत ब्रीफ में अपने वीकेंड वाले शो टिकटॉक पे बात करी थी। सो अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है तो आप शाम को 4 से 6 मुझे वीकेंड पर यानी फ्राइडे को जो है वो सुन सकते हैं टिकटॉक में। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं ना थोड़ा सा और उस पर रिसर्च करके आई हूं। सो अगर आप जो है अपने गूगल को बार बार आप पासवर्ड से ओपन नहीं करना चाहते, या आप पासवर्ड भूल जाते हैं ना, आपको रिकवर करना है अपना ईमेल, तो आप जो है कोई डिवाइस ढूंढेंगे जिसपे आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन कर सके। लेकिन अब आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा, अब आप अपनी फेशियल रिकॉग्निशन से जो है वो गूगल की आईडी खोल पाएंगे। अब आप कहेंगे कशिश यार ये तो क्या बात हुई, अब हमारे पास आईफोन है, हम तो वैसे ही फेस आईडी से जो है कभी भी अनलॉक कर सकते हैं, हम वैसे ही एंटर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अब आपको गूगल में जो है लॉगिन करने के लिए एक मिनी सेल्फी वीडियो जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें अपने फेस को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऊपर नीचे जैसा इंस्ट्रक्शन स्क्रीन में दिया जा रहा होगा वैसा आपको देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि वो रिकॉग्नाइज कर लेगा ओके ठीक है यही सेम बंदा है जिसकी आईडी है, एंड उसके बाद वो जो आईडी है वो आपकी हो जाएगी। सो जल्दी से जल्दी ये वाला जो फीचर है इसे जाकर जल्दी से ट्राई करो एंड मुझे आके बताओ यार कैसा वर्क कर रहा है ये आपके लिए, क्योंकि मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया है। 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप बता सकते हैं। फिलहाल जन्नत 2 से एक बहुत ही अमेजिंग प्यारा सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए, उसके बाद बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओविंदास।

Bilal Saeed gave us me beautiful wala track. आप enjoy किया 106.3 radio वाले पर. मुझे याद है जब ये गाना release हुआ था तो मैं school में थी. I think 11th या 10th या 11th standard में थी. Both चल रहे थे मेरे और पढ़ाई करने की जगह हम ये गाने के जो lyrics हैं इनको लिख लिख के याद किया करते थे. Oh my god, time कितनी जल्दी चला जाता है. चलिए जी, वैसे अब time के साथ साथ मेरे जाने का भी वक्त हो गया है. मैं यहाँ से चलती हूँ, मुलाकात होगी आपसे कल. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना और स्टे ट्यून रहना 106.3 रेडियो ऑलिव पर. बाकी मेरी याद सताए तो इंस्टाग्राम पे आ जाना. फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना ए अजनबी, मेरे फेवरेट आदित्य रिखारी की आवाज में, कोक स्टूडियो भारत से आ रहा है आपके रेडियो सेट पर. इसे एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए विदा. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जियो बिंदास.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ.

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
0: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम लक्ष्मण राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है ऑल ओवर रिचार्ज और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। तो जी भाई, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, अगर बांध रखी है तो और कस के बांध लीजिए। यहाँ पे हम एक जर्नी शुरू करने वाले हैं जहाँ पे बातों के साथ, गानों के साथ, किस्सों के साथ, कहानियों के साथ बैठ के हम एंजॉय करेंगे। और उसके साथ साथ आपके मैसेजेस के सिलसिले को भी आप शुरू कर दीजिए। 3311063 पर आप मुझे मैसेज कीजिए, अपने हाल के बारे में बताइए, क्या क्या किया आज के दिन, उसके बारे में डिटेल में मैसेज कीजिए। यहाँ पे गाना प्ले करते हुए ऑल ओवर रिचार्ज को हम किक स्टार्ट करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई हम बात करना चाहेंगे एक बहुत ही बढ़िया चीज के बारे में जो एक कमबैक कर रहा है कतर में। मैं बात कर रहा हूं वन चैंपियनशिप के बारे में, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है और वो कतर में वापस आ रहे हैं एक लैंडमार्क पार्टनरशिप के साथ, जहां पे एक बहुत ही बढ़िया ग्लोबली सेलिब्रेटेड मार्शल आर्ट इवेंट्स जो है वापस आने वाला है कतर में मार्च 2027 से लेके। तो तैयार हो जाइए वन के लिए। फिलहाल यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

आप सभी का स्वागत है, ये है ऑलिव रिचार्ज। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव और यहाँ पे एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट नॉन नेगोशिएबल बात आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, जो अगर आप मानोगे तो सेफ रहोगे। बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक बहुत ही बढ़िया बात आप सबके साथ शेयर करने को बोली है, वो यही है कि पब्लिक हमेशा किसी भी लिंक को ओपन करने से या शेयर करने से पहले वेरीफाई करे कि वो ठीक है या नहीं है। अननेसेसरी अननोन नंबर से या अनट्रस्टेड सोर्सेज से आने वाले लिंक्स को आप शेयर ना करें या फिर उसे ओपन ना करें, क्योंकि इन्हें फिशिंग के लिए, फ्रॉड या फिर बाकी साइबर क्राइम्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो हमारे साथ स्कैमर्स स्कैम कर जाएंगे। तो ये नहीं होने देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: देखिए आज हम दिल दहला देने वाली एक रिवेंज की कहानी बताना चाहेंगे आपको, प्यार में इंसान क्या क्या नहीं कर जाता। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, ऑलिव रिचार्ज में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो पता चला कि एक मोहतरमा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कपड़ों को एक एक करके चुन चुन के एक साइज छोटा करके रिप्लेस कर दिया, और वो बेचारा एक साल आसपास तक जूझता रहा। उसे लगा कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, लोगों से अननेसेसरी सॉरी बोलने लगा कि सॉरी मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, मैं वेट गेन कर रहा हूँ, ये कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे। वर्कआउट करना शुरू कर दिया बंदे ने, डाइट करना शुरू कर दिया बंदे ने, मगर बाद में पता चला कि नहीं, ये तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने एक खेल खेला था उसके साथ। इवन दो वो उस लेडी को जो है अरेस्ट कर लिया है। अब इसमें क्राइम क्या है बहुत लोग पूछ रहे हैं, सच बताऊं तो ये क्राइम है नहीं है मुझे भी नहीं पता, ये जज करने वाला मैं कोई ही नहीं हूं। मगर जो तरीका उस दीदी ने अपनाया है यार, मतलब इंसान के साथ मेसअप करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग निंजा टेक्निक लोग निकाल रहे हैं, अब तो बच के रहना पड़ेगा भाई। मगर मेरे को तो टेंशन है ही नहीं, अपन तो सिंगल है तो यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई एक बहुत ही बिजार रिवेंज की कहानी आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। यहां पे एक इंसान ने प्रूफ करके दिखा दिया कि कभी भी एक कॉमन मैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 2014 में एक चाइनीज आदमी ने $40,000 जो है स्पेंड किए, किस लिए? ताकि वो ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन के बीजिंग आईमैक्स सिनेमास के डिफरेंट डिफरेंट सीट्स बुक कर पाए, क्योंकि 7 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, बोला कि तू बहुत गरीब है। मगर उसने 7 साल के उस पार प्रूफ करके दिखा दिया कि उसकी चॉइस गलत थी। अभी उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे हैं, थिएटर में सीट है, गाड़ी है, बंगला है, मगर गर्लफ्रेंड है कि नहीं उसका अभी तक हमें पता नहीं चला है। फिलहाल जब पता चलेगा तो बताएंगे। यहां भी यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, एक बहुत ही मशहूर शायर है जिगर मुरादाबादी, उन्होंने लिखा है कि ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और ये बात सिर्फ इश्क में लागू नहीं होती, ये बात हमारे जिंदगी के हर उस चीज पे लागू होती है, हर उस सपने पे लागू होती है जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं और उस सपने को पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज के साथ अगर हम मोहब्बत करते हैं या फिर किसी भी मुकाम में अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो रास्ता आसान नहीं होता। आग का दरिया भाई, डूब के ही जाना पड़ेगा इसमें से। और जैसे जिगर मुरादाबादी जी ने लिखा है, हमें भी जिगर दिखाना पड़ेगा। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो पिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली ये एक रिलेशनशिप एडवाइस है, और मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि ये बात कई बार बोली जानी चाहिए मगर कोई बोलता नहीं है, अगर कोई बोलता है तो लोग सुनते नहीं हैं, ध्यान देते नहीं हैं। इसलिए मैंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली है कि मैं इस बात को और प्रोपगेट करूँगा। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो जाता है किसी ना किसी रीज़न के कारण, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, घर वाले नहीं मान रहे हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, कई बार ये होता है कि रिश्ता ख़त्म होने के बाद ना लोग काफ़ी बिटर हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। वो सब भूल जाते हैं जो एक पल उन्होंने गुजारे थे एक साथ अच्छे से, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, वो सारी खूबसूरत यादें वो भूल जाते हैं, एक बहुत ही बिटर फीलिंग एक दूसरे के लिए आ जाती है। तो मेरा ये कहना है कि यार जब भी कोई एक रिलेशनशिप ख़त्म होता है या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, जैसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से साहिर लुधियानवी साहब ने कहा है कि एक सुंदर सा अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे जब इंसान बेटर हो जाता है ना, वो सारी अच्छी बातें भूल जाता है, दुश्मन की तरह आगे वाले इंसान को देखने लग जाता है। तो मेरा कहने का मशवरा यही है कि जब भी एक रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो ये समझिए कि उसका वक्त था, वो वक्त ख़त्म हो गया, उस वक्त के साथ वो रिश्ता ख़त्म हो गया। कभी भी एक बेटर फीलिंग मन में ना रखे। फिर हाँ, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन भी बोलूँगा कि अगर आगे वाले ने आपको इतना दर्द दिया है, इतने टॉक्सिक रहे हैं, तो फिर भी ठीक है, दैट इज़ जस्टिफाइड। मगर कुछ कुछ रिलेशनशिप्स सर्कमस्टांसिस के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो सर्कमस्टांसिस के विक्टिम्स हैं हम सब कहीं ना कहीं। वो बात समझ के आगे वाले को माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए, फॉरगिव, लेट गो एंड लिव, ये मेरा मोटो है। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
3: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: ओलिव लगा और हो जा रिचार्ज।
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई एक बहुत ही खास बात आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। मैंने कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट देखा था जहां पे एक रिटायर्ड ऑफिसर बताते हैं कि उनके प्रोफेशनल जर्नी में वो बहुत सारे लोगों से मिले, कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी ऑनेस्ट स्ट्रेट ऑफिसर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स वैसे नहीं हैं। तो उन्होंने एक बात बताई कि मैंने कई बार देखा है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनमें ना गुरूर होता है अच्छा होने का, और जब गुरूर आ जाता है अच्छा होने का तो फिर वो पॉइंट नहीं रहता अच्छा होने का। एंड ये बहुत ही प्रोफाउंड बात है। देखिए, अच्छा होना एक बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो तो इंसान से एक्सपेक्टेड है। जब कोई इंसान अच्छा होता है और कहता है कि भाई देखो यार मैं तो अच्छा हूँ और गुरूर दिखाता है, तो वो पॉइंट वहाँ पर सर्व नहीं करता। और उन्होंने यही बोला है कि यार कभी भी हमें किसी भी इंसान को कम्प्लीटली जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जितना हो सके उतना नॉन जजमेंटल रहिए, चीज़ों को और अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। इन सब के बारे में उन्होंने बताया था। मगर जब हमने गुरूर की बात छेड़ ही दी है तो एक शायर के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिनका गुरूर विश्व प्रसिद्ध है। कौन है वो शायर, जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यहाँ पे गाने प्ले करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुलू हाइपरमार्केट में।
1: लुलू, where the world comes to shop.
2: Just feel like you're home.
3: Only laga aur ho ja recharge.
4: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई मैं एक बहुत ही प्यारी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि गुरूर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक शायर का नाम हमारे दिल में आता है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया है। मैं बात कर रहा हूँ गालिब की, और उनका एक बहुत ही फेमस शेर है जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं क्या। देख रहे हैं इस इंसान को, वो कह रहा है कि भाई इंट्रोडक्शन देके ना आदत नहीं है, अभी लोग रहते हैं आसपास अपने, कोई बता दो साहब को कि हम कौन है करके। और गालिब की जो पोइट्री है वो मुझे लगता है कि बहुत रूटेड है, रूटेड इन द सेंस जिस रीजन से गालिब बिलोंग करते हैं उस रीजन में काफ़ी रूटेड एक पोइट्री है उनकी। उसके बारे में जावेद अख्तर साहब ने भी जो है एक कॉमेंट किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्रोफाउंड बात उन्होंने की थी। मगर गालिब की शायरी में कुछ तो बात है, और शायद इसलिए जाकिर खान ने भी कहा था कि भाई गुरूर अगर है किसी में तो वो गालिब में है, बाकी सब तो कोशिश कर रहे हैं। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर। जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: मेरे प्यारे दोस्तों, टाटा बाबा करके निकलने का वक्त आ चुका है और धीरे धीरे हम जरा ये सीट खाली करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके, वक्त बिता के 3 घंटे टक टक टक करके निकल गए, पता भी नहीं चला। मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, कल फिर मुलाकात होगी 2 बजे इसी सीट में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और हमेशा ध्यान रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। Stay tuned, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है,
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर
2: ये गाना।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.

ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਈਵਨਿੰਗ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਲੇ ਵੀਕਡੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਬੀ। सेट कर रही थी, कर दे बुरा हाल। जी हाँ, बस कोई बात नहीं है, ये हाल और भी चंगा हो जाएगा। एक हफ्ते बाद फिर से वीकेंड आ जाएगा। और जी बताओ, आपकी आंखें कहाँ पे लड़ी? सब ठीक चल रहा है लाइफ में? कैसा रहा आपका आज का दिन, मुझे जरूर बताइएगा। गला में पता नहीं क्या हो रहा है यार, दो तीन दिन से गला जो है ना वो दुख रहा है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने का ये है कि वो बोलेंगे बेटी तो बहुत बोलती है, थोड़ा रेस्ट कर ले। तो रेस्ट वो करना नहीं है यार। 5:08 स्टूडियो की घड़ी पे पूरे दिन के बारे में बताने के लिए 3311063 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेज।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
3: जियो बिंदास.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
9: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

अखियों से गोली मारे, लड़की ने इसमें चश्मा लगा रखा रखा होता है यार, अखियों से कैसे गोली मार सकती है। जहां तक मुझे याद है रवीना टंडन ने चश्मा लगाया था कि नहीं लगाया था। हां जी मैं जी सुनियो कि दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन गौर है थोड़े नाल 5:18 10 से

0: ठंड।
1: सीनी सीनी दबती रातों में जलता हूँ मैं बरसातों में, डूबा डूबा हर पल यादों में, दिल क्या करे।
2: यार क्या होता है कि जब आपके फोन में मेमोरीज जो है वो आती है ना, सो वो मेमोरीज को देख के आपको एहसास होता है कि आपको ट्रैवल करने का कितना मन कर रहा है, और कुछ फोटोज को देख के आपको एहसास होता है कि यार आपको अपनी फैमिली से मिले कितना टाइम हो गया। सो मुझे याद है कि पिछले 2 साल से मैं अपनी दीदी जीजू से तो मिलती रही, क्योंकि हम सब अलग अलग रहते हैं, राइट। सो कोई किसी जगह रहता है, तो मेरा भाई जो है वो यूरोप वाली साइड रहता है, ठीक है। सो मेरे आज मेरी मेमोरीज फोन पे शेयर हो रही थी, तो मैं देखा कि यार हम लास्ट टाइम 2-2.5 साल पहले जो थे वो जॉर्जिया में मिले थे, और मुझे मेरे भाई को मिले हुए इतना टाइम हो गया है। वो तभी समझ लगता है जब आपको एकदम से मेमोरीज जो है वो आपके फोन में पॉप अप होती है। वैसे तो बैक ऑफ द माइंड ये चीजें चलती रहती है, बट या आपको वो चीजें याद आती है, यार अच्छा टाइम था यार, इतना टाइम हो गया लेकिन अभी मिले नहीं है। बट यस, ये फोन जो है वो आपको बहुत सारी चीजें फील करवाता है, कुछ ऐसे इंसान भी दिखाते हैं जिनके साथ अब आपको फोटो खिंचवानी ही नहीं है, आपको रखना ही नहीं है, और इसकी फोटो जो है वो डिलीट करनी है। सो यार आप बताइए, आपके फोन की मेमोरीज जो है वो आपको क्या याद दिलाती है जब अचानक से कोई ऐसी फोटो पॉप अप होती है। 3311063 पर आप मुझे बता सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जी ओम बिंदास।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे लुलु हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है रेडीमेड गार्मेंट साड़ी चूड़ीदार फुटवेयर लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं स्मार्ट शॉपिंग करें रिवॉर्ड पाएं ज्यादा मुस्कुराएं सिर्फ लुलु हाइपरमार्केट में
2: लुलु वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alukas. Joy Alukas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और एक बात याद रखना,
1: धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा।
0: यार ये खुशबू भी बहुत बड़ी चीज होती है ना कि यार नहीं, हमारे ऑफिस वाली खुशबू नहीं, अगर तुम सुन रहे हो तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यस, मैं बात करती हूँ खुशबू फ्रेग्रेंस है ना, तो हर इंसान की अपनी एक खुशबू होती है कि वो जब भी आप उसके बारे में सोचे आपके जहन में वो खुशबू जो है वो आ जाती है, या फिर वो आपके आसपास से गुजरे तो आपको पता रहता है कि या इस इंसान की ये वाली खुशबू है। तो मेक श्योर कि आपकी खुशबू जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में बड़े कांड होते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। जहां पे भी आप मिलो प्लीज ये कर लेना। सेल्फी ले ले रहे और आप लोगों का प्यार यार।
2: मिस सिमरन शहबाज, थैंक यू वेरी मच। अभी गाड़ी ड्राइव ही कर रहा हूँ तो बस जस्ट आधा घंटे ही आपका प्रोग्राम मिला सुना
0: जी,
2: दिल खुश हो गया। अच्छे सॉन्ग है, मैंने सिर्फ 10-15 मिनट ही गाने सॉन्ग वगैरह सुने हैं, बाकी तो टाइम नहीं था। थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप नाइस। आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको लव करते हैं, मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से आपको नेक तमन्नाएं, गुड विशेस। और जैसा कि आप कहती हैं कि लास्ट पे अभी टाइम आने वाला है, 100 किलो नहीं 100,000 किलो बेस्ट ऑफ लक।
0: स्वीट,
2: मैं भूल गया, मैं याद कर रहा था कि लव यू यार, लव यू एवरीबॉडी, लव योर प्रोग्राम,
0: थैंक यू
2: एंड लव मिस सिमरन एंड एवरीबॉडी, आई लव योर बिहाफ ऑफ ऑल लिसनर, थैंक यू वेरी मच, वी लव।
0: थैंक यू शाबाश जी, आपने इतना टाइम निकाल के इतना प्यारा वॉइस नोट जो है वो मुझे भेजा। एंड मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहूंगी कि मैं बात कर रही थी ना आपसे दी ओडिसी फिल्म के बारे में, क्योंकि हर कोई देख रहा था, तो मैंने बोला कि भाई अभी पीर प्रेशर हो गया तो इस फिल्म को देख लेते हैं। सो कल फाइनली मैंने फिल्म देखी, और लेकिन इस फिल्म को मुझे जो था वो 4DX में देखना था, और ये फिल्म मैंने देखी। देखो क्या होता है ना कि ऐसी फिल्म जो कि इस लेवल पे, बड़े लेवल पे बनी, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, तो ऐसी फिल्मों को अगर आप 4DX में देखोगे तो आपको और मजा आने वाला है। लाइक वो क्या होता है कि जितने भी फाइट सीन्स हो रहे हैं या फिर पानी वाले सीन्स हो रहे हैं, आपके ऊपर पानी उड़ रहा है, ठीक है, और हवा चल रही है, और एकदम मतलब क्या होता है कि जब फाइट सीन्स हो रहे हैं तो आपकी चेयर इधर उधर उड़ रही है, मतलब नॉट उड़ रही, ठीक है, मतलब इधर उधर होती है।

0: The 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on...

0: ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
0: रिमाइंडर देना चाहती हूँ, जरा रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए और अपने यू नो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि आपका ये जो माइंड है वो आपको कॉन्स्टेंटली जो है वो फ्यूचर के बारे में ही यू नो सोचने पे मजबूर करता है, कल क्या होगा, ये क्या करेंगे, आगे क्या होगा. सो कभी कभी ना थम के कम बैक, ओके, थम के वापस आओ और सोचो कि भाई ये जो राइट हियर इन दिस मोमेंट जो है ना आपकी जिंदगी, वही है लाइफ. तो ये जो आपकी जिंदगी में अब हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, क्योंकि वो हर टाइम जो है वो बीत जाता है, तो फ्यूचर में जाके उसी के बारे में सोचने में ये जो आज वाली मोमेंट है ना उसको आप खराब कर रहे हैं. तो वापस आइए, कम बैक डार्लिंग, और इसको एंजॉय करिए, ठीक है? बस उतना सा रिमाइंडर देना था. क्यों, मजा आ रहा है ना? ऐसे ही होता है जब आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हो जो कि अभी है, तो मजा आता है. बिल्कुल इस गाने की तरह. 3, 2, 1 and go.

टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।

हम भी आपके दीवाने हैं, ऐसी तो बात नहीं है जी। केवल ये 5 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है और ये टाइम पता क्या गया?

एक भूल मत करना, बताऊं कौन सी? अरे गर्मी में बाहर निकलने की यार। मौसम टेम्परेचर सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे मतलब अच्छा है 36 डिग्री सेल्सियस अभी तक टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 38 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है क्योंकि ह्यूमिडिटी है 55% यार, बैंडी बज रही है। सो विंड जो है 15 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है और मिनिमम टेम्परेचर आज का 32 डिग्री सेल्सियस होने वाला। रात होते होते ह्यूमिडिटी डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो बढ़ने वाली है और इट्स ओके यार, सबके साथ ही है, आप अकेले थोड़ी हो। सुनते रहो रेडियो ऑलिव और गेदर जियो बिंदास।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: This is Amaya Dastur on Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ਹਾਂਜੀ पंजाबी हूँ तो कैसे ओट्स खा सकती हो तुम, ये है वो है, ठीक है यार, थोड़ा थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे पराठे मिलते हैं मैं वो भी पेल देती हूँ, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ओके सो मैं ओट्स खाती हूँ और मैं रात में इसको भिगो के उसमें चिया सीड्स वगैरह डाल के कर देती हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ पता नहीं somehow कि वो उस दूध जहाँ पे दूध था ना वहाँ पे कुछ तो एक प्याज का टुकड़ा जो था ना वो कहीं ना किस तरह से मुझे नहीं पता किस तरह हुआ वो जाके उस दूध में गिर गया। और अगले दिन जब मैं ओट्स खाने लगी और जब मैंने पहली बाइट ली मतलब आपको पता है कि मिल्क में अगर प्याज का टुकड़ा आपको आए उसका स्मेल आए तो आपका क्या हाल होगा। तो मैंने किसी भी तरीके से अपने आप को संभाला लेकिन आज मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, पूछो क्यों।
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल क्या बात है आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल ये बात है।
0: क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे एक आइसक्रीम देखी जो कि पर्पल रेड अनियन आइसक्रीम है, लाइक रेड अनियन आइसक्रीम, इसमें वो स्वीट एंड सेवरी है ओके सो उसके अंदर आपको कैरमलाइज रेड अनियन मिलेंगे। भाई मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ उस चीज के बारे में, क्रीम मिल्क एंड शुगर के साथ लिमिटेड एडिशन, मतलब क्या क्या चल रहा है मुझे नहीं जानना ये कहाँ पे मिल रही है और कौन लोग इसको खा रहे हैं लेकिन बना कौन रहा है यार, मुझे वो बता दो यार क्या दिक्कत है यार तुम्हारी। मतलब सोचो पर्पल रेड अनियन आइसक्रीम, मुझे नहीं बात करनी इनसे जो भी बना रहे हैं। आप बताइए क्या पर्पल रेड अनियन आइसक्रीम आप खाना चाहेंगे, 3311 1063 पे बता दो यार, आप मेरे दोस्त नहीं हो फिर।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

आज मैं आपको डार्क सीक्रेट के बारे में बताने वाली हूँ। मैं जी सोनियो के दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन गौरी आपके साथ। और ये डार्क सीक्रेट के पढ़ने के बाद मुझे समझ नहीं लग रहा कि मैं इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करूं, पर ये बहुत ज्यादा जो है वो एक कंपनी है जिसका नाम है द डार्क सीक्रेट। इसमें क्या होता है

$500 देकर इसको, और वो आके वहां पे आती हैं, रोती हैं, बट वो अपना बताती नहीं है कि वो कौन है, कि इसीलिए वो मिस्टीरियसली आती हैं, राइट? तो किसी को लगता है कि दूर के रिश्तेदार है, किसी को लगा कि एक्स होगी, किसी को लगेगा कुछ, मतलब वो बट अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी किसी को बताती नहीं है, बट इसकी क्या जरूरत पड़ती है वो मुझे नहीं पता है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाए। स्मार्ट शॉपिंग करे, रिवॉर्ड पाए, ज्यादा मुस्कुराए, सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में।
2: लुलु, where the world comes to shop.
3: Fresh on the grill, slow cooked mandi.

0: song yar. भाई साहब क्या गा दिया दिलेर भाजी ने. जी मैं कहीं सुनियो की दादी की हालचाल सच या गाल सिमरन कर रहे थोड़े ना 651 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है. एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चला रही हूँ यार. और क्या चाहिए लाइफ में.
1: Gen Z decoded.
0: आज एक और वर्ड को हम एक और स्लैंग को डिकोड करने वाले हैं. Gen Z एक वर्ड यूज करते हैं कैंप. CAMP कैंप. कैंप आप वो चीज को बोल सकते हैं जिसको यू नो जो कि जो चीज वेरी एक्स्ट्रा एग्जैजरेट कर लेते हैं उसको एक्सट्रीमली मतलब ओवर जो चीज है उसके लिए कैंप वर्ड जो है वो हम यूज कर लेते हैं. लाइक दैट आउटफिट इज सो कैंप. ओके फाइन. So yeah, ये वर्ड आप अगर यूज करना चाहें तो इट्स वेरी कूल. 652 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है. अगले घंटे जो है वो आपके लिए और भी बहुत सारी बातें क्योंकि जमान मेरी रुकती नहीं है. रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जियो बिंदास
2: रेडियो और

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Joy Alucard brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange.

0: saygım. ਸੋਨੀਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਲਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7:05 ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਪੇ
1: ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
0: Aur aaj trivia shivya mein jis film ke bare mein baat karne wale hain uska naam hai Patthar Ke Phool.
2: Tum se jo dekhte hi pyar hua, zindagi mein pehli baar hua.
0: Okay, so ye Salman Khan ki back to back chauthi hit thi. Exactly, Maine Pyar Kiya, Baagi, सनम बेवफा और उसके बाद ये फोर्थ हिट थी, मतलब बैक टू बैक उनकी हिट हो रही थी. एंड उसके साथ अगर मैं बात करूं 1988 में सलीम खान ने जो है इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी वो आमिर खान के लिए लिखी थी. लेकिन अब क्या था कि मैंने प्यार किया बॉक्स ऑफिस में थी तगड़ी हिट होगी, तो फिर उन्होंने बोला कि ये सलमान खान ही फिल्म जो है वो करने वाला है. सो विनोद मेहरा सर भी थे इसमें, बट उनको काफ़ी टाइम बाद एक बढ़िया रोल मिला था और बहुत बढ़िया यू नो उनका रोल था और एक्टिंग थी, सब कुछ थी. लेकिन क्या हुआ कि फिर बीच में विनोद मेहरा सर जो थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर उनके जो डबिंग थी उनका जो डबिंग थी वो किसी और ने जो थी वो की थी, और ये फिल्म उनके जाने के बाद ऑफकोर्स रिलीज हुई थी. सो इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत और भी बातें हैं जो कि मैं आपको वापस लौट के बताने वाली हूँ. सुंदर ये रेडियो ऑलिव गोर के अंदर ये जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: हाय, दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हां जी इसमें तो क्या, जब ये फिल्म पत्थर के फूल जो थी जब आई थी, इस फिल्म ये फिल्म जब बन रही थी, सो जो विवेक वसवानी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, सो सलमान खान ने उनको इंसिस्ट किया कि भाई रवीना टंडन को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने का रीजन पता क्या बोला, कि यार उसके ना चेहरे पे बड़ी लाफ लाइंस है, मतलब अगर वो हंसती है तो बहुत सारी लाइंस जो है वो है, लाफ लाइंस उनके फेस पे पड़ती हैं। सो या बट सलमान खान चाहते थे कि जो यू नो संजय दत्त की जो वाइफ थी पहली, है ना, फ्यूचर वाइफ है ना, रिया पिले, सो वो चाह रहे थे कि वो इस फिल्म में काम करे, बट वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, तो वो कभी भी यू नो फिल्मी दुनिया में जो है वो आना ही नहीं चाहती थी। तो सलमान खान का इस फिल्म को लेकर एटीट्यूड बहुत ज्यादा माना जा रहा था, कहते हैं कि अगर ये फिल्म लेट रिलीज हुई है तो उसका रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही है, और क्या इसकी वजह से, मतलब सलमान जो विवेक वासवानी थे उन्होंने बोला कि भाई इतना पंगा हो गया, उन्होंने लाइफ में उनके साथ कभी कोलैबोरेट नहीं किया, वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं करूंगा इस बंदे के साथ काम, क्योंकि क्या था कि सलमान खान की बैक टू बैक चार हिट हो गई थी, ये चौथी हिट थी पत्थर के फूल, है ना, उसके बाद थोड़ा एटीट्यूड तो भाई का वरना ही था ना यार। 7:17:42 स्टूडियो की घड़ी भी हो चुके हैं।

0: के दिन ये जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: 25 मिनट 20 सेकंड स्टूडियो के घड़े पे पहुंच चुके हैं, बाहर का चांद देख रहे हो।
1: चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर।
0: और इश्क कमीना 2.0
1: दे मुश्किल जीना।
0: गाने की नई क्रिएटिविटी आती है तो अच्छा लगता है, लेकिन वो सेम गानों को आप रिक्रिएट करे जा रहे हैं ना, उसमें उतना मजा नहीं आता। लेकिन हर रोज आप लोगों का नाम लेने में बड़ा मजा आता है यार। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे बोल दूं, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, आपका हक भी बनता है कि आपका नाम लिया जाना चाहिए। सो क्विकली आप मुझे एक काम करिए, आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप नोट कर लीजिए, 3311106 3। जी हाँ, 3311106 3। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए, सिर्फ और सिर्फ नाम होगा और कुछ नहीं, हाई हेलो नहीं है। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे देखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। चलो क्विकली अब भेज दो। वाजिद जी, साजिद जी, वाह क्या बात है, इकट्ठे नाम हो गए। अमृत जी थैंक यू सो मच, आतिक जी थैंक यू सो मच, अहमद जी थैंक यू सो मच, यूसुफ जी थैंक यू सो मच, नबीन जी थैंक यू सो मच, अमृत ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो बोल चुकी हूँ, इमरान जी थैंक यू सो मच, वरिंदर जी थैंक यू सो मच, मुनीर हुसैन जी बहुत बहुत शुक्रिया, लतीफुल्ला जी थैंक यू सो मच, अकरमुद्दीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, वसीफ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, कादर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सूरज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नवाब जी, रीता जी, श्रवण कुमार जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नवाबुद्दीन जी ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है बोल चुकी, महबूब जट जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रीमा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शाबाज जी, इमरान जी थैंक यू सो मच, मूर्ति जी थैंक यू सो मच, बलाल जी थैंक यू सो मच, असलम जी बहुत बहुत शुक्रिया, रीता जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, उद्दीन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सफदर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सलीज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, जवाहिर, हीरा, जहरा जी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम बोल लिए बेटा आप लिखो थैंक यू, और अपना फेवरेट वाला इमोजी जो कि आप अक्सर यूज करते हो। माही जी आपका नाम भी ले लिया, मैं अपना सर घुमा लेती हूँ वरना आप लोगों के नाम लिखे जाओगे आप।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो

अगर आपने बहुत दिन से अपनी बेबी को पैम्पर नहीं ना किया है तो इट्स टाइम। कहाँ सिमरन बेबी, हमारी तो सिंगल लाइफ है। अरे मैं कार की बात कर रही हूँ यार, कार भी कौन सी बेबी से कम होती है। सो हम खुद को पैम्पर करते हैं तो कार को पैम्पर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कार का ख्याल रखेंगे तभी जिंदगी जो है वो आपकी बढ़िया चलेगी। कार स्मूथ चलेगी तो आप स्मूथ रहोगे, वरना क्या होता है कि कार में थोड़ी सी भी दिक्कत आई ना तो फिर मूड खराब हो जाता है यार। सो आपका मूड खराब नहीं होना चाहिए, आपकी कार भी खराब नहीं होनी चाहिए। वाल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस है जो कि आपको सलवा रोड पे मिलेगी। बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के लिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन वाल्वोलिन प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम फिल्टर और डिजिटल कार पासपोर्ट के साथ। अब क्या है कि डिजिटल कार पासपोर्ट के साथ आपकी कार की पूरी सर्विस हिस्ट्री जो है ना एक ही जगह सेव रहती है, तो सॉर्टेड हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी लाइफ में, है ना। तो लाइफ में आप एक काम जरूर कर लीजिएगा, जो मैं आपको एक नंबर बता रही हूँ उस नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है। 7765 5954, एक बार फिर से 7765 5954, इस नंबर पे कॉल करिए क्योंकि आपके लिए और भी सरप्राइज है। अगर आप कॉल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या आपको सर्विसेज जो है वो मिल सकती है ना। बट जब आप कॉल करेंगे ना ये जरूर बोलना कि सिमरन कौर ने बोला था कॉल करने के लिए रेडियो ऑलिव सुनते हुए, ठीक है। ये काम आप जरूर कर लीजिएगा एंड इनके शोरूम भी विजिट कर लीजिएगा। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: तोहरी लच के जब कमरिया हसारा जिला ही लो.

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: है दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: थोड़ी होता है।
1: हंस मत पगले प्यार हो जाएगा,
0: हंस मत पगलो, तुम दोनों को कोई पागल कह जाएगा। ए मैंने राइम किया था यार। जी, एक चुटकी सॉन्ग खेलने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाओ। आज जो मैं सॉन्ग आपको सुना रही हूँ, मतलब एक चुटकी सॉन्ग जो आपको सुना रही हूँ, वो क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। वैसे ये धुन काफी है, अगर एक जरा सा भी एक वर्ड अगर निकल जाता ना आगे तो आपको पता लग जाता। लेकिन आप मुझे बताइए आपको कौन सा गाना लग रहा है, प्लीज लिख के मत बताइएगा, क्योंकि वॉइस नोट भेजेंगे तो आपकी आवाज सुनने के लिए मिलेगी। और जिस तरह से मेरी आवाज सुन के आप लोगों का दिन बनता है, मेरा भी दिन बन जाता है यार, मतलब तो रात ही बनेगी। ठीक है, सो क्विकली आप मुझे वॉइस नोट भेजिए। हे सिमरन, सिमरन कौर वक्त जैसी एनर्जी होनी चाहिए। हे सिमरन, अपना नाम बताइए, गाना गा के बताना है या बोल के बताना है, योर चॉइस। और भेज दीजिए 3311063 पर, नाम जरूर बता दीजिएगा। एक बार वापिस ही सुना रही हूँ। जियो बिंदास है और एक बहुत ही अंडररेटेड गाना है जो कि मैं आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: मुझे नहीं पता इस गाने को कितने लोगों ने सुना है, लेकिन अगर आप मुझे, मैं आपको इतना बोलती हूँ कि अगर आप ये गाना अभी सुनेंगे तो आपकी प्लेलिस्ट में ये गाना आ जाएगा, आपके फोन की प्लेलिस्ट में ऑफकोर्स। और अगर आप कुछ ऐसी फील में हैं तो होए ये गाना तो मजा आ जाएगा और भी।

0: ਵਧੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੇ ਆ ਗਏ
1: गाना कबूल है ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोजाना आज जिंदगी में आना
0: भाई सनम। लिरिक्स भी आपने अपने बना लिए और एकदम ऐसे मतलब शायरी की तरह सुना दिया बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करेंगे ना सो मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है तो वो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा।
2: हेलो सिमरन हाउ आर यू
0: गुड यार
2: माय नेम इज अस्मा एंड द सॉन्ग यू प्लेड वाज ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना
0: कोई तो गा दो यार
3: सिमरन दिस इज शान ये गाना है ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम
0: शान नाम है और आप गाए ना ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू
4: सिमरन जी आपने जो दो एक चुटकी सॉन्ग सुनाई वो मूवी है प्यार किया तो डरना कैसे ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम
0: ओफो हाँ जी
5: हेलो हाय सिमरन जी
0: हाय अदील
5: कैसी हैं आप
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
5: सिमरन ये सॉन्ग है आ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम
0: थैंक यू मैंने तो शुरू से ओ जाने जाना सुना क्योंकि आ जाने जाना हो गया यार।
6: हाय सिमरन
0: हाय नंदिता
6: लव योर एनर्जी एज ऑलवेज
0: थैंक यू
6: द सॉन्ग दैट यू हैव सिलेक्टेड इज ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम।

अतरंगी रे से आप ही गाना सुन रहे हैं, अरिजीत सिंह की आवाज। वे मिस अरिजीत यार, अभी नई फिल्मों में आ नहीं रहे उनके गाने। सिमरन कौर है थोड़े नाल। अब सिमरन कौर के यहाँ से गलती माने का टाइम आ चुका है, लेकिन जाने से पहले शो किया

चलो दोस्तों, अब सिमरन कौर यहाँ से जा रही है, लेकिन कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात जबरदस्त इवनिंग्स में। अगले 2 घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए, ओवरथिंकिंग मत करिए, पानी पी लीजिएगा, लेकिन सोने से पहले पानी मत पीजिएगा वरना चक्कर ही काटते रह जाओगे। खाते भी दरवाज करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Aur swagat hai aapka hafte ke pehle din mein. I know this must be very difficult jab aap subah office gaye hoge ya aapko laga hoga ki yaar weekend kaise khatam ho jata hai itni jaldi, pata hi nahi chalta. Par koi baat nahi yaar, har weekend aapko kuch sikhane ke liye, thoda sa break dene ke liye aur restart karne ke liye hota hai. So aaj restart I'm sure aap kar chuke hain. Pure din aap apne sare kaam nipta chuke hain, meetings kar chuke hain aur kal ki taiyari already you know dimag mein hona start ho chuki hai. So usko thoda sa break dete hain, kaam se ab bahar nikalte hain aur baat karte hain thodi si famous studio RK studio ki. You are listening Radio Olive aur ye hai Midnight Lounge. Aaj Bollywood ke sunahre daur ko agar main yaad karun to ye kissa shayad har film lover ko pasand aayega. अगर आप राज कपूर के फैन हैं तो आरके स्टूडियो का वो आइकॉनिक लोगो तो जरूर याद होगा आपको. राज कपूर अपनी बाहों में नरगिस को उठाए हुए. लेकिन क्या आप जानते हो कि ये लोगो किसी डिजाइनर की इमेजिनेशन नहीं था, ये एक्चुअली राज कपूर की फिल्म बरसात के एक फेमस पोस्टर से इंस्पायर हुआ था. 1949 में बरसात रिलीज हुई और उसका पोस्टर इतना पॉपुलर हुआ कि राज कपूर ने डिसाइड किया कि ये सिर्फ फिल्म का पोस्टर नहीं रहेगा, ये उनके प्रोडक्शन हाउस की पहचान बनेगा. और वाकई बना भी, मतलब आज भी जब वो लोगो स्क्रीन पर आता है तो बिना एक डायलॉग बोले ही समझ आ जाता है कि अब एक क्लासिक कहानी शुरू होने वाली है. मुझे इस बात में एक बहुत ही खूबसूरत सिंबॉलिज्म लगता है. आज कंपनीज अपना लोगो बनवाने के लिए बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स के पास जाते हैं, काफी बड़ा अमाउंट खर्च करती हैं, लेकिन उस दौर में एक फिल्म का एक इमोशनल फ्रेम ही इतना पावरफुल था कि वो पूरी कंपनी की आइडेंटिटी बन गया. So, इसी को कहते हैं टाइमलेस सिनेमा. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आपको बॉलीवुड का सिर्फ एक आइकॉनिक पोस्टर अपने रूम में लगाना हो तो वो कौन सी फिल्म होगी. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और ये है मिडनाइट लाउंज.

वेलकम बैक. अभी अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और व्हेन आई वाज आस्किंग कि कोई एक बॉलीवुड पोस्टर जो आप अपने रूम में लगाना चाहें, और यहाँ पर इतने सारे सवाल, इतने सारे पोस्टर्स मुझे यू नो व्हाट्सएप पे आने लगे. बस इसी के साथ अब आगे थोड़ी सी बातें करते हैं और बात करते हैं एक और यू नो कहानी और किस्से की. सो आज की म्यूज़िक में हम बीट्स, रीमिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. लेकिन एक वक्त था जब एक कंपोज़र कहते थे कि अगर गाना एक आम आदमी घर जाते हुए गुनगुना ना सके तो मेलोडी अधूरी है. ये सोच थी लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन, यानी कि SD बर्मन की. अब उनका मानना था कि म्यूज़िक को कंप्लीटेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती. इसके लिए उनके कंपोजिशन में आपको फोक म्यूज़िक की मिठास भी मिलेगी, क्लासिकल खूबसूरती भी और एक सिंप्लिसिटी भी. चाहे सुन मेरे बंधु रे हो या फिर कोई दूसरा गाना उनका, आज भी ये गाना सुनते ही लगता है कि जैसे कोई अपना इंसान गा रहा हो. शायद इसीलिए उनके गाने ना सिर्फ हिट नहीं हुए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होते गए. और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ म्यूज़िक की बात नहीं थी, लाइफ में शायद सिंप्लिसिटी सबसे डिफ़िकल्ट आर्ट है. और आपने ये देखा ही होगा आज के टाइम पे, जो चीज़ सीधी होती है वो सबसे ज़्यादा दिल तक पहुँचती है. चलिए एक बात बताइए कि आपके हिसाब से बॉलीवुड का सबसे सोलफुल कंपोज़र कौन था, SD बर्मन साहब, RD बर्मन या मदन मोहन? अब कंपटीशन तो कोई है नहीं, पर सबका अपना एक फेवरेट होता है. सीओ बताइए मुझे कोई एक नाम और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। आज बॉलीवुड के सुनहरे दौर का एक ऐसा किस्सा जिसमें दोस्ती भी है, ईगो भी है और प्रिंसिपल भी। मतलब सोचिए, जहां पर दोस्ती होती है वहां ईगो नहीं रहता, जहां ईगो होता है वहां प्रिंसिपल नहीं रह पाता, लेकिन यहां पे सब कुछ है। सो मोहम्मद रफी और शाहिर लुधियानवी दोनों अपने अपने फील्ड के लेजेंड्स, एक लफ्जों का जादूगर और दूसरा आवाज का। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया। वजह थी रॉयल्टीज। साहिर लुधियानवी का मानना था कि गीत सिर्फ सिंगर की वजह से नहीं, लिरिसिस्ट की वजह से भी अमर बनते हैं। उन्होंने लिरिसिस्ट के राइट की बात उठाई और इसी मुद्दे पर उनके और रफी साहब के बीच में मतलब थोड़ी सी मतभेद हो गई। अब कुछ सालों बाद दोनों ने साथ काम नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ दूरियां भी कम हुई और फिर दोनों ने दोबारा साथ काम भी किया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया और कहानी बताती है कि लेजेंड्स भी इंसान होते हैं, उनके भी अपने प्रिंसिपल्स और अपनी सोच होती है। अब आपको लगे कि यार आप और आपके दोस्त तो हमेशा ही किसी ना किसी बात पर आर्ग्यू करते हो, तो आप सुन लो कि हर कोई करता है आर्ग्यू। अगर आपको रफी साहब का सिर्फ एक गाना हमेशा के लिए चुनना हो तो बाय द वे वो कौन सा होगा? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिडनाइट लाउंज।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3।

भाई आज की जनरेशन की बात तो चारों तरफ है, लेकिन आज की जनरेशन के लिए मेरा नाम जोकर एक कल्ट क्लासिक है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो वी वर टॉकिंग अबाउट यू नो कुछ ऐसे बॉलीवुड के किस्से और कहानियाँ जिनसे आपको और मुझे वो सारी मूवी याद आ जाती है। अब अगर बात करें फिल्म रिलीज हुई मेरा नाम जोकर, तब इसका हाल बिल्कुल उल्टा था। राज कपूर ने इस फिल्म पर सालों की मेहनत और अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी थी। फिल्म बहुत एम्बिशियस थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप। कहते हैं आरके स्टूडियो को इस फिल्म की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, मतलब फाइनेंशियल लॉस जिसे कहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसी सेटबैक के साथ राज कपूर ने एक नया रिस्क लिया और बनाई बॉबी, फ्रेश फेसेस, फ्रेश म्यूजिक और नई लव स्टोरी, और वही फिल्म आरके फिल्म के लिए कमबैक बन गई। कभी कभी जिंदगी में एक फेलियर ही अगले सक्सेस का रास्ता बनता है। तो अगर आपको अभी लग रहा है कि यार मैंने तो ये बिजनेस क्या सोच के खड़ा किया था और अभी तो वैसा कुछ हो ही नहीं रहा, तो याद रखिएगा हर किसी के साथ ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके हिसाब से राज कपूर की सबसे यादगार फिल्म कौन सी थी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311106। स्टे ट्यून्ड, जियो

Yes, तो अगर मैं सिर्फ एक शब्द बोलूं, याहू, वो जीमेल वाला याहू नहीं, मतलब मेल करने वाला याहू नहीं, वो गाने वाला याहू, तो शायद आपके ना चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। शम्मी कपूर वाला याहू। बॉलीवुड को सिर्फ हिट फिल्में नहीं दी उन्होंने हीरोज को डांस करना सिखाया। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने डांस स्टेप को बहुत ज्यादा रिहर्स नहीं करते थे। उनका मानना था कि डांस को ना फील करो, काउंट मत करो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। आज मेरे ऑफिस में से बहुत सारे लोग हैं जो बड़े दिल से नाचते हैं, परफेक्ट नहीं नाचते, लेकिन जब वो डांस करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यार वंस मोर। इसीलिए जंगली, कश्मीर की कली और ऐसी बहुत सारी जो मूवीज थी उनकी अगर मैं गाने देखूंगी तो आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं। उनकी एनर्जी स्क्रिप्टेड नहीं लगती, नेचुरल लगती है, और शायद इसीलिए उन्हें बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार भी कहा जाता था। सो शम्मी कपूर का कौन सा गाना सुनते ही आपका मूड ना एकदम अच्छा हो जाता है, बताइएगा जरूर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और नंबर है 3311063। थोड़ी देर में बात करेंगे कि मदन मोहन की जो मूवीज हैं या फिर मदन मोहन के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज।

वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. आई वॉज आस्किंग कि यार कितनी सारी ऐसे गाने हैं, कितने सारे ऐसे मूवीज हैं जो आपको ना एकदम से फ्रेश फील करवा देती हैं. अब ऐसे ही एक और किस्सा सुनाती हूँ. ये थोड़ा सा खास किस्सा है क्योंकि ये रात और म्यूज़िक दोनों से जुड़ा हुआ है. लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें रात का सुकून बहुत पसंद था. कई सारे लोगों को होता है, आज भी जब आप अपने ऑफिस में कॉलीग से बात करोगे, अपने फ्रेंड से बात करोगे, तो किसी को दिन बहुत पसंद है, किसी को रात बहुत पसंद है. कई सारे कंपोजिशंस जो होते थे वो उन्होंने देर रात बैठकर ही बनाए. उनका मानना था कि जब दुनिया शांत होती है और सुर और भी ज़्यादा साफ सुनाई देते हैं, शायद इसीलिए उनके गाने जो लग जा गले, नैना बरसे, आपकी नज़रों ने समझा, ये सब जो गाने थे आज भी रात के वक्त कुछ और ही महसूस होते हैं. मतलब कुछ म्यूज़िक ना सिर्फ सुना नहीं जाता, एक्चुअली फील किया जाता है. सो लेट नाइट ड्राइव हो तो मदन मोहन का कौन सा गाना आप ज़रूर सुनना पसंद करेंगे बताइए मुझे. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM. नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक जो अभी आपने सुना। बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस आई हैं और फिर चली भी गई, लेकिन मीना कुमारी का नाम आज भी एक अलग एहसास के साथ लिया जाता है। उन्हें ट्रेजेडी क्वीन सिर्फ इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उन्होंने इमोशनल रोल्स किए, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि डायरेक्टर्स को लगा कि यार कई बार ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके आंसू ऐसे निकल आते थे। साहेब बीवी और गुलाम, परिणीता, इस तरह की बहुत सारी मूवीज थी जिनमें उनकी आंखों में दर्द दिखता था, उसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। सब कुछ एक्टर्स के डायलॉग्स याद रह जाते हैं और कुछ अपनी खामोशी से बस ऐसे ही आपको याद रहेंगे। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ग्रेसफुल एक्ट्रेस कौन रही है, चाहे वो पुराने दौर की बात की जाए या आज के टाइम पे। बाय द वे, आई रियली लाइक दीपिका पादुकोण, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत अमेजिंग लगती है। आप मुझे बताइए नए दौर और पुराने दौर दोनों में आपको कौन सी जो हीरोइन है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063, you are listening Radio Olive with me, this is Midnight Lounge.

आज हम यूट्यूब पर गाने रिलीज होते ही देख लेते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब पूरा देश एक रेडियो के आसपास बैठकर नए गाने का इंतजार करता था। मतलब चाहे वो कोई इंडियन रेडियो हो, विविध भारती हो, रेडियो साइक्लोन हो, उसके मतलब बॉलीवुड म्यूजिक को ना घर घर तक पहुंचाया था। कई बार ऐसे होता है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसके गाने सुपरहिट हो जाते हैं, और जब लोग थिएटर जाते हैं तो गाने पहले से ही उनकी जुबान पर होते हैं। सच कहूँ, रेडियो सिर्फ गाने नहीं प्ले करता, यादें बनाता है। शायद इसीलिए आज भी जब पुराने गाने रेडियो पर प्ले होते हैं तो मतलब सिर्फ म्यूजिक नहीं, पूरा एक जमाना लौट आता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि यार जाते जाते आपको क्यों ना वो पुराने रेडियो की भी याद दिला दूँ। जब पुराने बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहे थे तो रेडियो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, और आज भी आपकी और मेरी लाइफ में रेडियो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर वक्त को सिर्फ एक गाने से वापस ला सकते तो गोल्डन एरा का वो कौन सा गाना आप प्ले करवाते? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर विद लॉट ऑफ न्यू एनर्जी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन वीडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: This hour is brought to you by
2: Homes R Us. We complete your home.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: बापू आ गायन तो जबरदस्त हिट छे।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।